अस्सलामु अलैकुम नोदिया के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ट्यून को गेंदी बे हुरिहा हे हुते नवर उफावर वगुत खुल खंगे देन बलालन सले मिसेस लागे मि हफ्ता के शो या के गवस मि बदल कोले अलवन फहीदा बलालन सले फिल्मी एक एक मसे के तो गवाहक दक्काल मकुरे गेंदा मि शोगा दिवे ही दे बेरु के सिनेमा तका फिल्मी एक एक प्लेटफार्म तकुम फिरना बलालन सले कामुदा ही के अमरीत फिल्म तका टीवी सीरीज तका आदि डॉक्यूमेंट्री तोगे मालूमात एहुते नगेने सिनेमा वारम मसे के कुराना मी हफ्ता का मिगेनेस्ते बलालन सले शो के मिसेस लागे शो तकुम गेनेस्ते एम एफ फाहु शो एहेवे म गेस्ट डायलॉग मिबा मी हफ्ता का हिमने नुलाना ಶೋಗ ಬ್ಯಾತಕಾಯಕಿಗ ಕುರಿಯದ್ದೆಮ್ಗ ಕುರಿಂ ಫುರತಮ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗ ಲವೆ ಹಿಮ್ನಾಲ್ ದೇನ ಲವೆ ಫಹು ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕಾಯಕಿಗ ಅರ್ಗುಣ್ ಪತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ

0: बिना इधर उधर देखे एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
1: एक मिनट
0: गो।
2: लापता हूँ ये बता तू
1: तुम हार गई।
0: अच्छा
3: मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने get out right now।
0: ना कुछ सिर्फ एक दिन के लिए।
1: कभी कभी एक दिन भी काफी होता है।

भैया मैं द्वस आओ मुगे वगु तो दिन वडगतम वनी हम एखनी एकला अंगे शे एकला अंगे दिन वडगतमा एकुगा मिनुई एव्विस मेवाय एग बोश गणकुन नुनिकुन्ना नेते आदि अंगहेनको मा बने नुआ नेते आदि नुएस विहा नेते आदि तिमन रसकलांगे शरी कुकुरी मीहुं कोबा हैं एकलांगे गोआ लव्वा वही कुरव्वा द्वह एवरेम बुना नेते इबरस कलांग शरी ककुआ कमंग हेकुआ हम एककुस तिमम मेंगे तेरे गान वा कम इबरस कलांग तिमम में मिदनवी